गंगा ग्रास काल तेह जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्म मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिगसात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दैदस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बहु चतराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

चरै कसम्बल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरै काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यत्न करो तुम अनक बिद, रह ना पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत। पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही, बिनस जाय ए हेत, गणती गणो ना गण सको, उड़सदारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यों करिय संग, ज्ञानो या बिद सही चित, झूठो माया रंग, ज्ञानत सोई संत सोए, भ्रमते की चित भिन्न, अंध कूबते देख डो, जे होवो सो प्रसन्न, न्या कह समराते, कारण करण योग, नानक ते उसत करो, न्याहू कियो संजोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाए, नानक मनो न बिसरै, गुणित गोविंद राय। पौड़ी टहल

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेह जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके सलोक ठाक न होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लिपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै सबद पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कहलै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए किन न कालो बंद नानक उभरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभस बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जामे जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाँ हो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे कटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अनाहौना तूने छुटे निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिय आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरे सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिले ते सूरतन वेस। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटिए चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राए फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सबदे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथया नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहूं मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक तार जिया रे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तदा तावत तव मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तव होए मने प्रगास, तन साचा तेउ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तैं बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कलजुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे, श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

पौड़ी रारा रेन हो सबजा की, ताजा मान छुटे तिरिबा की, रण दरगह तो सी जय पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाए बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घटकट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना माराधु, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की लाड़ मिटत बिन साही, अड़ाड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त स्यान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन भरे अबहारे, शास्त्र सिमरत बेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे। सरन परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, पावै खसमता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत स्यानप सगल त्याग, नानक लय सुमाए। पौड़ी ससा स्यानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चले तुहारे साथी, साध सेवा लावे जे आपै, नानक ताको दुख ना व्यापै। सरो

हर हर मुख ते बोलना मन बूठे सुख होए, नानक सब मह रवरया थान थनंत्र सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान, होवते आए सदसदीव दुख भंजन गुर ज्ञान। हाँ छुटकै होय आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब किछ प्राप्त हुआ। सलोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शले, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनहगार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, ऐसम पै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए। तुद पावे ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावे पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलते आयो, अनक जौन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सतगुर वचन समाए। खिमा गही सत संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकर पई अनंत सुख विश्राम। खेब निबाही बहुत लाभ, करे आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार हे संतें कै सदा संग निधाराय आधार हे ठाकर हौं दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे कांखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुपमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै।
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जेह पैंडे महयंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग।

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर पूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहा होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दर गै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रिजा सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्तन

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोहो मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल देह नानक हर हर नाम ले, बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेस आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिर प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवयाप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।

खर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म कर

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संगे आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोउ कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद।

तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फन होग, पसरियो आप हुए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविद अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पै अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगे आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौ हिरै, कई कोट पर

नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभव नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाए तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत तां की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बुझन हर बबेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर का सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक प्रभ पालन हारा, सेवक की राख है निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभ के सेवकों को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राख है अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सुए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कै एक न जाना, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਪਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ,
गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिनस जाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बस है सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला है, एक समर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरि आप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप, अनक विस्तार एक ते पै, एक आराध प्राष्ट गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुरप्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखे आसे जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग, वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख है, गुरप्रसाद को बिरला लाख है, सो क्यों बिसरे जे बिखते काड है, जन्म जन्म का टूटा गांड है, गुरपुरे तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

मन बिकसै साध चरण तोए। भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावै संग। एक बस दीजै कर मया गुरप्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वछर सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावै मनहीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका। आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकार हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरु कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तै किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपै परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तब सगन अब सगन कहां विचार है। जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप। जय अशाला शेदा भेद

एक भगवंता कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आपति यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊते ऊचा नानक आप सको आपै पहुचा, जह आप रचियो पर पंच आकार तेहु गुण मैं कीनो बिस्तार, पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख माने अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

आठ पहर प्रपेखो नेरा मिटे ज्ञान बिनसाय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पलत दुएल हो सवार राम नाम अंतर और तार। पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते सच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाए। तिसते दूर कहां को जाए उबरे राखण हारते आए। निरपहु जपै सगल पहु मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभु पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल भए जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहौ करत विहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाय। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बूझिए नह कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाई जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथे अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई शरण दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिरै सा संग लिव लाए, खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिस्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारणै हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिए नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभु कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानी है, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे कठाए, मंत्र शुद्ध जपत हर नाए, सब मैं पूर्ण रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब को संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत न काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल पवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तैं बसें दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है। दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया। जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोज इंदिया।

ताया प्या गणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलता है सतगुर नो मिले सो हर मिले नाही किसै परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई है चित क्यों सास

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वाल छल कर चत कड दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया।

आपो अपनी आपे पछताणी। अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवां। सेवक सच्चे साह के सही प्रवान, दूजा सेव नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवां। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवां। नारायण लया ना ठूंगड़ा है, पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या। नित विसो चखे निंदा करता पचमवा। विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया, कौन तिसनो रखे। नानक ते शरणागति जो पुरख्या लखे। श्लोक महला पंजवां। नरक कोर बहु दुख घने, अकिरत घना का थान। तिन प्रभ मारे नानका, होय होय मोय हराम। महला पंजवां। अवखत सबे कीतियन, निंदका दारू नाहे। आप लाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवां। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर तन सचिया खुट। सब आंदे से मिट गए जमका पौ छुट। काम क्रोध बुरे आईया संग साधु टुट। विण सचे दूजा सेव दे होए मरसन बुट। नानक कौ गुर बख्शिया नामै संग जुट। सलोक महला चौथा। तपा ना होवै अंदरों लोभी, नित माया नो फिरै जज मालिया। अगों दे सदया सत्तै दी भिख्या लै नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया। पंच लोग

तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाद जना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया, महापुरखां की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए, हर अंदर ला

फिर इस तपै दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वरतिया सो नानक आख सुनाया, सो बूझै जो दईए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वडियाई। हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वडियाई, बगसिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड़ियाई। पौड़ी महला पंजवां, भगत जना का

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

भेखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतर सपारी कहो गुर गाज शिव सब को जान।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन ग्रहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापे।

सूर्य चंद करे उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आपते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या रहाओ, कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहा

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे काहे होए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे ना मैं जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग ना छूट समाया, कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम आधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान, गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग, इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया रहाओ। कहत कबीर सुन।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निज पत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भए राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ रीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगया।

गुर प्रसाद अगल पही अवर है ना तरथा बेगा ना रहाओ। निवर दूर दूर फोन निवर जिन जैसा कर मान्या अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया तै उत्पत पर लो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे ओ तृष्णा गूण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे ओ ऐसा ना

काम क्रोध द्वय भय जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल धन निबेरै, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सनोरे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का, चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना, अंधा लोक न जाने, मूर्ख ए आना, कहो डडिया।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निरासी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरनी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्याग कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसै सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जाओ पावा, सो कट शाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छाक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावे, जोबन जार जुगत सो पावे, आस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंट ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखै जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक सब तन फारे।

बंधक होए बंद सुध लहै, पब्बा पेद पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया पया भेद पुबत पहचानिया, मम्मा मूल गया मन मान मरमी होए सो मन को जान, मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कह, यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ, रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ, रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया, एहरा छाड़े ओ रस आवा ओ रस पिया एह रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे ले मल्लावे अंत ना जाए परम सच पावे, आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे विसन मिले सब ही सच पावे, वाह वाह वाही जानिए वाह जाने एहो होए, एहो आरे ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोए, ससा सोनी का कर सो दो कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजे पाओ पूर रया तैंतर पवन राओ, खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा तो पवजल तरत ना लावे बारा, ससा सो सह से सवार सोई सही संदे निवार, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब एह त्रियो कंत कहावा, हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बो सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे, खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जाओ मना रह जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पै रह, पंडित लोग कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार, जा कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की श्लोक, पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार, साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे, थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार अनपौ शब्द तत् निजसार, चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो, हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो बिचारो घट में खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास,

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवे कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिसताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगे रहो कर्म धर्म की सूल ना सहो सातै समकर बाचा जान सातै सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटे संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निद्राया गुरगम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रह अपंग अछेद नौमी

दसवीं दैदस होए आनंद छूटै परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज महवाए। सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै हैराए। बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्टना पैसै कबै। थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट में जोए। बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट में दूजी आन तौ लो महल न लाभे जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारियले। चरण बद्धक जन तेउ मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राय दिए। जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारे री। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोच सोच दिन राती।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खू

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अन

गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश पयाले। गावन तुदनो रतने उपाय तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई। हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई। आसा महला चौथा। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख सुवाना। एक दात एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिने अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त पय जन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जियो तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी।

तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रतने उपाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त भय है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सृजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहले कीचे अरदास, पाप पुंदो साखी पास, जैसा तू

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ, कर्म धर्म

दूर नाहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीखक पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा नाही कोए, किसवे खाली चंगा होए। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता करनहार करतार। रहाओ वाट ना पावो विंगा जाओ, दरगह बैसन नाही थाओ। मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद। खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास। अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे। कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ। नानक एक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ। जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए। नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै। आसा महला पहला पंच पदे। दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही। रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै। चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै। अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही। सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही। दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन।

काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, ऐथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर से मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना, दुख सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ, सच नाम जा नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवे, मन अठकीचै अंत विगोवे रहाओ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ, आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी, दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहा ओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहा ओ हाँ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावे नानक ता को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो।

राय। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रह मन खोट कमाहे। हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्टि जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुर अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सह।

गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा रहाओ, हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हूण माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड़ नंगा, पच पच मोए बिख दे।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता कै साथ। तिचर कंत बहु फिरै उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। इच पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रह हो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवां, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक घर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमरत वेद अभ्यास। जह बैसा तह नाले बैस, सगल भवन में सबल प्रवेश। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक पय अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब कि छोड़ प्रभु तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवको किसकी कान, सगत पूला फरै बेबान। तेरी वड़ियाई कही ना जाए, जय कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई प्रभ।

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चल।

मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोयत खोयत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरे हो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया, पूरी आसा मंत्र बताया,

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए, सुख रैण में हानी सहि सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय पाई। पाहे न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड़ परानी। जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते सर

जागे। कहो नानक गुण गाइयै नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां, नौ नित तेरह।

जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनाशी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दास।

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही।

साथ पूरा गुरपुरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो एहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन सचे नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर

माया गुरपूरै प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवां ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं लै जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद। हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो चेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही ना जाए हर साधु हर सुमाए। लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे। नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोट ना जाए नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए नमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा। सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिखत्यास निवारी। दासन की होए दा दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवां दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संजम तर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करमा सरन परे की रखो शर्मा। आसा महला पंजवां तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा। तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवां हर जन लीने प्रभु छड़ाए। प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै राम नाम गुण गाए। डाकी कोचत कछु ना लागै चरण कमल शरणाए। संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाए। गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवां औख दिखायो हर को नाओ। सुख पाए दुख बिन सिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे अंध पया समिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवां बांशत नाही सो बेलायाई बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवां सदा सदा आया तुम परगास सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांस सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस आसा महला पंजवां जाका हर स्वामी प्रबेली पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवां
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦਿਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਮੱਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸੁਮਾਰੇ ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤੇ ਉਧਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਆ ਗੋਚਰ ਇਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੇ ਤੁਜੈ ਮੁਜਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਦੇਹ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰ ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਯੰਤਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ।

हर आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जाग हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याणप जन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न साके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन परबोधे अपना, पाछे अवर रिजावे, राम नाम जप हृदय जापे, मुखते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇਹਰ, ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ, ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ।

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, यो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवां, घर में सुख बाहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझे सोई परवान, सास सब जा का निशान। गुरपूर हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी वलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवां, जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, तां दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लिहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह करमा, जा कै मन वसिया हर नामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह भरम बहुजोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुजै हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ शरण आई, इहां सुख आग्यागत पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम इन तुम्हारे, तू मेरा ठाकर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हों सेवक तेरा, शरण गही प्रभ गुनी गहेरा रहाओ, तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेख बिकसै कौलार, तू मेरी गतपत तू प्रवान, तू समर्थ मैं तेरा तान, आंदन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रभ अरदास, आसा महला पंजवा, रोवन हारै झूठ कमाना, हासा सो करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवै को हासा सपावन रहाओ, बाल व्यवस्था ते बरदाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरतै संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म तां का परवान, आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर ना जानी, पोर पया बहर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध धरोरी, प्रभ मिले बेकी लालसा, तां ते आलस कहां करोरी रहाओ, कर मैं अमृत यान निसारेओ, खिसर गयो पूम पर डारेओ, साध मोहे लादी हंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे भरमे अंधारे, नानक मेली सृजन हारे, आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवै तेरी मया, सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ, अनक दुख देवै अवरा कौ, पहुंच ना साकै जन तेरे कौ, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहजा नंद बसै बैरागी, नानक की अरदास सुनी जै, केवल नाम हृदय मैं दीजै, आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जा कै गृह सब किश है पूर्ण, सो भेटिया निरपै धनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल, ठाकुर अपने किन्नी दात, जलन बुझी मन होई सांत, मिट गई पाल मन सहज समाना, नानक पाया नाम खजाना, आसा महला पंजवा, ठाकर स्योजा की बनियाई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु ना थोरा हर भगतन कहो,
खात खर्चत बिलशत देवन कौ रहाओ। जा का तनि अगम गुसाई मानुख की कहो के चलाई। जा की सेवा दस अष्ट सिधाई पलक दिष्ट ताकी लागो पाई। जा कहो दया करो मेरे स्वामी कहो नानक नाही तनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सतगुर ध्याया तब मेरा मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सियो संसार नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत तौ पो मिट्यो मेरे मीत। जो मैं उठ गई प्रभ तेरी ता पूर्ण होई मनसा मेरी। देख चलत मन पे दिलासा नानक दास तेरा प्रवासा। आसा महला पंजवा अंदर मूसा लाई टुकाई गिरत कु मैं खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया निचर गृह बांधया काल कै फांस सख्त सर सांधया। बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड़ निचल कर पाया। साह संग जप्यो हर राय नानक जीवै हर गुण गाए। आसा महला पंजवा दो तुके नौ उनकै संग तू करती केर। उनकै संग हम तुम संग मेल उनकै संग तुम सब को लोरै। उस बिना को मुख नहीं जोरै ते बैरागी कहां समाए। तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ। उनकै संग तू ग्रे मैं माहर उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मन महत उनकै संग तुम साग जगत। उनकै संग तेरी सब थाटी उस बिना तू हुई है माटी। ओह बैरागी मरे ना जाए हुक्मे बांदा कार कमाए। जोड़ विछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा ना ओह मरता ना हम डरिया ना ओह बिनसै ना हम कड़िया। ना ओह निरतन ना हम भूखे ना उस दुख ना हम कौ दुखे। अवर ना को मारन वारा जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ। ना उस बंधन ना हम बांधे ना उस तंदा ना हम तांदे। ना उस मैल ना हम कौ मैला उस आनंद ता हम सदकेला। ना उस सोच ना हम कौ सोचा ना उस लेप ना हम कौ पोचा। ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा जाहो निर्मल ता हम जचना। हम किश नाही एक ओही आगे पाछे एको सोई। नानक गुरखोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा। आसा महला पंजवा अनक पात कर सेवा करिए। जियो प्रांतन आगे धरिए पानी पखा करो ता जब मान। अनक बार जाइए कुर्बान साई सुहागन जो प्रपाई। तिसकै संग मिलो मेरी माई रहाओ। दासन दासी की पनिहार उनकी रण बसै जी नाल। माथे भागता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सब नेमा कर्म धर्म।

दिन सरैन ए सेवा साधो भय कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार जी प्राण कटकटे आधार रहाओ प्रभ की प्रीत पय सगल निदान प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम प्रभ की प्रीत सद शोभावंत प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत प्रभ की प्रीत एह पव जल तरै प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै प्रभ की प्रीत सगल उधार है प्रभ की प्रीत चले संगार है आपो कोई मिले ना भूल जिस कृपाल तिस साध संग कूल कहो नानक तेरा कुर्बान संत ओट प्रभ तेरा तान आसा महला पंजवा भूपत होए कै राज कमाया कर कर अनर्थ बिहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अवर कौदीनी काच गगरिया अंब मझरिया गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया रहाओ निरपव होयो भया निहंगा चीतना आयो करता संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा ऊचे मंदर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परत पा वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इनस्यो प्रीत करी कनेरी जो मिलिए तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उस

अब मोरे मन पया आनंद, भौ चूका टूटे सब फंद। कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। एक नाम

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जान्या रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर स्वामी इहां उहां कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही पली पांत सब सहे सुमाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गाई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मनो बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां, गुरपूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां।

चतराई सियाण पाक तै कामना आईऐ, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाईऐ। जे लख कर्म कमाईऐ किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटै महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार, पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेप संसार, हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाय संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिया, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिया। दिन सरैण आराध संभाले साह साह, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा पूर रया सर्ब ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सिर छत दूजा नाहे कोए। ज्यों पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रव आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगता का सहाई जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे ना चूरिया, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार, गाफल गहलिया किती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगिया, आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ। भोगै भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरलै पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे, देख तुम

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वडियाई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पाओ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम, रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिय एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जौ मन के परमा, परम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रैन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे।

तो चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पाव को पार प्राण हा निज कर तिस थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मानिया मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाई है मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरह हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ताको सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लए मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजे मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब के सब तिस सुजे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मै मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहु दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कार्थ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
उत्तर आप घट सरवरण आवै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहा सब ठाउरे रहाओ सच व्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जय स्यों राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थन मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावे सोफन होए सुन पारथर नानक कह विचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूजे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साज धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सदगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुरसब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखै ठाक रहाए सिख संगत कर मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो न कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखै रखवाला तिर भवन सूजै आप गवावै बाणी बुझै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन

मोल है, तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नजर करे हो मिले सचवांडिया, आसा महला पहला। आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई, जनमरण का दुखण निस साधोई, बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई, सतगुर साधना सेवया हर भक्त ना पाई रहाओ। आवन जावन तौ रह पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन सह परम पूरा, संत जना को मिल रह तन तन जस गाए, आदि पुरख परंपरा गुरमुख हर पाए। नटुए संग बनाया बाजी संसारा, खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, हाँ मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जगह रह सोजना गुरसब्द विचारा, ज्यों अंदले हर्थ टोहनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निस दौत सवार, ज्यों तू राख त्यों रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन्म द्वारा, जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुरतारे। आसा महला तीजा, अष्टपदियां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, शास्त्र वेद सिमरत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी, साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वेडाणी, ताके चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी, रहाओ तेतीस करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी, ताके रूप ना जाही लखणे क्या करे अख विचारी, तीन गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरिया खानी, कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे कथ कहानी, तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी, जाको नजर करे तू अपनी साई साई समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है जेती अवन जानी, जा तुत पावे ता गुरमुख बूजे होर मनमुख फिरे इयानी, चारे वेद ब्रह्मे कव दिए पड़ पड़ करे विचारी, ताका हुक्म न बूजे बपड़ा, नरक सुरग अवतारी।

पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ स्मरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम से

क्या कीजै, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हथ दीजै, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगण सियाने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम त्यावा, जिन नानक सतगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवै, जन नानक कौ हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम त्याया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे

हर हर नाम जपंते कछ न कह जमकाल, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। संत मिलो संतन कै संग।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसै तायो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत ना जाए पाया गही नानक चरण सरन। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो। चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जड़ी

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़ै नाही लै चले कत गलाव्या। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अज्ञान बिनसे न मिटाय अवन जायण, मिठे मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाणा प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी। कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया। सा संगत आप होवा आप जग तराया, राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी। नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा प्रभ संग सोहंती, संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है। सा साच तार जीवा प्रपे खर गुण गावी है। बिरहा लिजाया दर्श पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहना ना पायो, बिन सतगुर कहना ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। सलोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सत्यार कूड़ियार, हों च पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरीऐ हों विच धोवै, हों विच जाति जनसी खोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सारना जाना। हों विच माया हों विच छाया, हों मैं कर कर जन तो

अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाहा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाए कह संभाले सब नाहा जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सचे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला। लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसा देसे ते नह केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर ढो ना लैनी धाम दे एक मूल ना बुझने अपना अण होंदा आप गणाए दे हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुजै ध्याए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला। सच ता पर जानिया जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरै तन करे अच्छा तोए। सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रेसिया ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बीओ। सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड्डै तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्लै होए। पौड़ी दान महडा तली खाक जे मिलै ता मस्तक लाईऐ कूड़ा लालच छड्डीऐ होए एक मन अलख त्याईऐ फलते वे हो पाईऐ जे वेही कार कमाईऐ जे होवै पूर्व लिखिया ता धूड़ दिनां दी पाईऐ मा थोड़ी सेव गवाईऐ। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरतिया काल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। जे कहोए ता उगवै रुती हूरत होए नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए।
ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਭਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤਪੁੱਛੀ ਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै, पथ प्रवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अत ओमिया विचार अगै विचारी है, मोह चल सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत युग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच मैं अच्छा साच रह, सबको सच समावै रिग कह रहया परपूर, राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राहित जाहे, नानक तौ मोख अंतर पाहे, जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जात गोपी लै आया वृंदावन मैं रंग किया, काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया, नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद

पौड़ी सतगुर विटो वारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवह पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए धर तारा जू तोलिए निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे शीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपुखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोक निश्चो करमं कहो नानक निहचो त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़ा अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ गुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया। महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाईए होर नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्ने आए पातू पजै साला ही सच सूत दरगै अंदर पाईए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे वी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडाण मन अंधा ना सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावै सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगै पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाई धोती टिका तैं जप माली धन मलेशां खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संयम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। महला पहला मानस खाने करे निवाज शुरी वगाए नो तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई
नील वस्त्र पहर होवै प्रवान, मलेश तान ले पूजै पुराण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसै ना जाना, देके चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, एहो आना साडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुली भरेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवै ता सच पाई है, पौड़ी चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़ियाईयां आपे ही कर्म कराएंदा, वड हो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा, नदरो पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पिख ना पाएंदा, सलोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है कर मोहे पितरी दे, अगै वत सियाणी है पितरी चोर करे, वड़ी है हथ दलाल के मुस्पी एह करे, नानक अगै सो मिले जे खट्टै काले दे, महला पहला, ज्यों जोरू सिर नावनी आवै वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुवार, सूचे एह ना आखी है बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए, पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया, चीज करन मन भावदे हर बुजन नाही हारिया, कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरण विसारिया, जरे आई जो बनहारिया, सलोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए, नानक सूतके अपना उतरै ज्ञानो तारे तोए, महला पहला, मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत रिया पर तन रूप, कन्नी सूत कन पै लाए तबारी खाहे, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे, महला पहला, सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है भाणे आवै जाए, खाना पीना पवित्र है दितो न रिजक संबाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे, पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां, सह मेले ता नदरी आईयां, जां तिस पाणा ता मन वसाईयां, कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कड्डियां बुरियाईयां, सह तुठै नौ निद पाईयां, सलोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए, सुचे अगे रखे ओन कोई ना पिट्यो जाए, सुचा होए कै जेविया लगा पढ़न सलोक, कोहती जाई सटिया किस एहो लगा दोख, अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवा पाया किरत ता होवा पाक पवित, पापी सोतन गड्या थुका पईयां तित, जित मुख नाम ना उचरै बिन नामै रस खाहे, नानक एवै जानियै तित मुख थुका पाहे, महला पहला, पंड जमियै पंड निमियै पंड मंगण वी आहो, पंडो होवै दोस्ती पंडो चलै राहो, पंड मुआ पंड पालीऐ पंड होवै बंधान, सो क्यों मंदा आखियै जित जमै राजान, पंडो ही पंड उपजै पंडै बाज ना कोए, नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाहीऐ पागा रती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार, पौड़ी सब को आख है अपना जिस नाही सोचण कड़ी, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है, जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है, मंदा किसे ना आखी है
ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੀਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ। ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ। ਦਰ ਲੈ ਲੇ

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

ना करे कम आ ना सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली ओह वजो पे दूना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाणा खाए। जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास। श्लोक महला दूजा। एक नहीं दात आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात साहेब तुठ जो मिले। महला दूजा। एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए, नानक सेवक कंडी है जे सेती खसम समाए। पौड़ी नानक अंत ना जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया।

पहर चोलना गधा नाचै, पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए, कने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै, कीस गलौरे लियावै, कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै, बंस को पूत बियाहन चलिया। सोए ने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो, कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो, लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी, एको जसै द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जगसा।

पै सूता बुझ गई अगन नानक से धुआ अरव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजैर बाब भूल बिगारियो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पर दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना रख स्थेते हरा मैया हो बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करत आया ता पी चीत ना रख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करैखवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम ले ले करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालिनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तौ गण नहारे खाओ पात पहत अर लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कश तपना कियो तीस बरस कश देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर आसार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर।

और रोज जात रह निवाज गुजारा है, कलमा पिस्तना होई, सत्र का बा कठी पितर जे कर जान कोई, निवाज सोई जो न्यो बिचारा है, कलमा अगले जान है, पांचाओ मुस मुसल्ला बिसावे, तब तो दिन पछान खशम पसान, खसम पछान तरस कर जी मैं मार मणि, कर फीकी आप जनाए अवर कौ जान, तब होए पिस्त श्री की, माटी एक पेख तर नाना, ता मैं ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजग स्यो मन माना, आसा गगन नगर एक बूंद ना बरखे, नाद कहां जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधव परमहंस ले सिदाना।

आओ बजामनहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पए दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा बिष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यों भूल नहीं कहिया रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपरे धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंबा सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखे।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कास

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्व भूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ, साज कते बखाने अल्लाहो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाहो गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वत

की महिमा वर्ण ना साकौ नानक पर परीला। गुजरी महला पंजवां मुन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कश ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवां दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल है पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो।

मन को एह उपदेश दृढ़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई मिल साधु हर जस गावै नानक भवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवां खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाय ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो धरी। त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल।

सास सास तेरा नाम सुमाराओ तुम ही कौ प्रव्याही, नानक टेक पही करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हरस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवां, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवै तो पाए। अब मोहे आए परयो सरनाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवां, आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाईऐ जमकी त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंद सेती कर जाईऐ जां ते काल न बिरथी जाईऐ। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा ध्याईऐ रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते हर दासै पैज रखाई है।

गुण निध नाम ना गायो रहाओ। कौडी कौडी जोरत कपटे अनक जोत करतायो। बिसरत प्रभु केते दुख दनिया महामोहनी खायो। करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो ना मोहे कमायो। गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो। गुजरी महला पंजवां रसना राम राम रवंत। छोड़ आन व्योहार मिथिया पज सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक। कर कृपा गोबिंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक। करण कारण समर्थ श्री धर शरण ता की गही। मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निद लही। गुजरी महला पंजवा कर चौथा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सकल सियाण पास।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत।

तार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेश मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समर्थ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रगास पय साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर आंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्व ज्योत निरंजन संभू छोड़ो बो जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधं जगत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः नागरम बेखतज अमृत पी आया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंतना पर सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार ऐ जी जप तप संजम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाईए तेरी भगत परे भंडार रहाओ सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार सर्व लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नजर

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, शिव कर नींद ना होई। शक्ति कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नाल विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरे आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गलत हारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बोलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰਨਿਧ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਣੀ ਧਾਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾ

जिसन होए दयाल हर नाम से लेहे। आगम्या गोचर बयान तो अंत ना पाई है, जिसनो होहे कृपाल सो नाम त्याई है। सुरुक महला पंजवा, कड़शिया फिर अन्न सुआव न जान सुनिया, सेई मुख दसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा, खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़, तै सह दित्ती वाड़, नानक खेतना छिजई पौड़ी। आराध्य हो सच्चा सोए सब केशो जिस पास, दुहा सरिया खसम आप खिन मैं करे रास। त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो, पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो। कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए। जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया, पाईन सब निधान साहेब तुठिया। श्लोक महला पंजवा, लदम लबन हार कर्म करन दो मां पिरी, इको सृजनहार नानक ब्याह ना पसी है। महला पंजवा, पापड़िया पाशाड़ बाणस चावा सन कै, गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वही पौड़ी। वाह वाह सृजनहार पाईन ठांड आप, जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप, नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतिया ने अपनी रख गरीब निवाई थाप, आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप, वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। श्लोक महला पंजवा, जा कौ पहे कृपाल प्रभ हर हर सही जपात। नानक पीत लगी तन राम सियों, पेटत साध संगात। महला पंजवा, राम रमो वडभागी हो जल थल मैयल सोए, नानक नाम आराध्य बिघन लागे कोए पौड़ी। भगता का बोलिया प्रवान है, दरगह पवै थाए भगता तेरी टेक रते सच नाए। जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए, भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए। दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा, कोट बिघन तिस लागते।

कड़ी मोहतन है विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर वीर वरियाम केने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया, नाम निदान या खोट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ते आए दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसके वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समर्थ नजर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार, राख ले हो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कठा, पहनंदिया सब अंग, नानक त्रिगत ना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभु।

मिलै कित गली, हर के संत बतावो मार्गो, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अरे, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावलो, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कत हूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता। अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया भय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे। शरण आयो राख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे। जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे। सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे। मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ।

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां, तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया, एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईऐ। राग देव गंधारी महला पंजवां घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सदी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कतहूं जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार अनहद रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै, ब्रह्म आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाछै, साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै, आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे। रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पारे उतारियो, दीन दयाल पय प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार, मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन पव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, आना समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊंचा। रहाओ बहु बेअंत बड़ो बाह गाहरो, था नहीं अगहूचा तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया। कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनक तपंथा, बिन गुर नहीं पहुंचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवा मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाहीं रीको, खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो। रहाओ अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो। चार या शर्म चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो, गुर सब दृढ़ाया परम पद पाया दुति गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निध पाई सहजो।
राग देव गंधारी महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जो हर जासो हर हर लिखे राम, तिस जन के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए। जो मार्ग धर्म चले सै राम, नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए। हर सुन हर नाम ने सै राम, धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए। सब हर हर नाम त्यावै राम, पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़िए। नित हर हर हर जस गावै राम, वण त्रैण सब आकार है मेरी जिंदड़िए। मुख हर हर नाम ते आवै राम, नानक ते हर दर पै नाया मेरी जिंदड़िए। जो गुरमुख भगत मन लावै राम, बिहागड़ा महला चौथा। जिन हर हर नाम ना चेते ओ मेरी जिंदड़िए, ते मन मुख मूड आने राम। जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए, से अंत गए पछताने राम। हर दर गए ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए, जो मनमुख पाप लुभाने राम। जन नानक गुरमिल उभरे मेरी जिंदड़िए, हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलहो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए, जो हर हर नाम दृढ़ावै राम। हर जपद्या खेन ढिल ना की जाई मेरी जिंदड़िए। मत के जापै साहो आवै के ना आवै राम, सा वेला सो मूर्त सा घड़ी सो मोहत सफल है मेरी जिंदड़िए। जित हर मेरा चित आवै राम, जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़िए। जम कंकर नेड़ ना आवै राम, हर वेखै सुनै नित सब किश मेरी जिंदड़िए। सो डरै जिन पाप कमते राम, जिस अंतर हिरदा सुध है मेरी जिंदड़िए। तिन जन सब डर सुट कते राम, हर निरपव नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए। सब चख मारन दुष्ट कुपते राम, गुरपुरा नानक सेविया मेरी जिंदड़िए। जिन पैरी आन सब कते राम, सो ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़िए। जो सबदू साहेब वड्डा राम, जिनी एक मन एक आरा दिया मेरी जिंदड़िए। तिना नाही किसे दी के चड्डा राम, गुर सेवे है हर महल पाया मेरी जिंदड़िए। चख मारन सब निंदक कंडा राम, जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए। तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम, बिहागड़ा महला चौथा। सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ, तू जाने जो जिए कमाई है राम। हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए, सब वेखे मन मुकराई है राम। मन मुखानो हर दूर है मेरी जिंदड़िए, सब बिरथी काल गवाई है राम। जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए, हर हाजिर नदरी आई है राम। से भगत से सेवक मेरी जिंदड़िए, जो प्रभ मेरे मन पाने राम। से हर दरगह पहनाया मेरी जिंदड़िए, अहनिस साज समाने राम। तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए, रंग राते नदर नी साने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए, मिल साधु संगया गाने राम। हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर तृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, तिस मन नाम वसाए राम। जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर तानो निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर रव रहया मेरी जिंदड़िए, पार ब्रह्म प्रभदाता राम। ताका अंत ना पाईए मेरी जिंदड़िए, पूरन पुरख विधाता राम। सर्व जिया प्रतपालदा मेरी जिंदड़िए, ज्यो बालक पित माता राम। सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए, जन नानक गुरमुख जाता राम। शक्का एक बिहागड़ा महला पंजवा, शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

हर काय का चंभव देखिया मेरे लाल जीओ, जो करे सो धर्म ने आए राम, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जीओ, आवन जान सवाए राम, आवन ता जाना तने किया जन्मे दिन सिर जिया, एक ना मेल सतगुर महल बुलाए एक परम पूले फिर दिया, अंत तेरा तू है जाने तू समय रहा समाए, सच कह नानक सुनो संतो हर वरतै धर्म आए, आवो मिलो सहेली हो मेरे लाल जियो, हर हर नाम अरा दे राम, कर सेवा पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जमका मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगह शोभा पाई है, जिनको विधाता है तरो लिखिया तिन्ना रहन दिन लिवलाई है, हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिले आसा दे, जन कह नानक मुक्त होवा हर हर ना मारा दे, कर जोड़ो संते कत्र होए मेरे लाल जियो, अबनासी पुरख पूजे हा राम, बहुबिध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो, एहो मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन धन सब प्रभु केरा, क्या को पूछड़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे, भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा, जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा, दह दिस खोज तहम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायाड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमै रिया समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी, गुरमुख प्रगट होया, मिटिया देरा दुख नाठा, अम्यो हर चोया, जहां देखा तहां स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए, जन कह नानक सतगुर मिलाया, हर पायाड़ा कर आए, राग बिहागड़ा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना, कट सोहना प्राण आधारा राम, सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की, अपरिया पारा राम, गोपाल दयाल गोविंद लालन, मिलो कंत ने माणिया, नैन तरसन दर्श परसन, नै नींद रहन विहानिया, ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पय सगल सिंगारा, नानक पयंपै संत जंपै, मेल कंत हमारा, लाख उलाहने मोहे हर जब लग नह मिले राम, मिलन को करो अपाव किश हमारा न चले राम, चल चित बेत्या नित प्रे बिनो कवन विधि ना तीजिए, खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजिए, आसा प्यासी रहन दिन यार रह ना सकिया एक तले, नानक पयंपै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले, सेज एक प्रयो संग दर्शना पाई है राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाई है राम, निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निदे, राम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नमन दे, गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए, नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए, संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम, इश्पुनी मन सांत तप्त बुझाया राम, सफला सो दिन सरहणे सुहावी अंत मंगल रसकना, प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन कवन रसना गुणपना, प्रम लोभ मोह बेकार थाके मिल सखी मंगल गाया, नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अंधन नाम वखाणा राम, अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लगे तेरा पाना राम, कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना,
ਸਮਰਾਥਿਆ ਗਾਥਿਆ ਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨ ਤਨ ਤੁਮਨਾ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਧੈ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਉ, ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ। ਧੂਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮੰਤਨ ਲੱਗੋ ਹਰ ਜੀਉ, ਸਭ ਪਦ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ। ਪਥਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹੇ ਤਿਨ ਸੰਗ, ਜਿਨ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀ ਦਾਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ। ਅਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਹਰ ਜਪ, ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਜੀਤਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰ ਜੀਓ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਹਾ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਨ ਪਹਿ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਲਹਾ ਰਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਵਿਆਪੈ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਾਤਿਆ। ਏਕ ਜਨ ਏਕ ਮਨ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਮਾਤਿਆ। ਲਗ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ, ਮੰਤ ਨਾ ਓ ਮਹਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪੱਲੈ, ਸੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਾ।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तप्त न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमे सरोवर पियो अमे सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संते संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीशर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभु मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया पर मोहे लोभाणी, बीच ना कोई करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तप तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाई है, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कढ लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। आगाध बोधया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निध गाया। बिहागड़ा महला पंजवां शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले, बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतियां पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले। रसना आराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर सेवा ते सुख पाई है होर थै सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी तू।

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा कहे।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा, एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी, आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला, कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह।

तिचर ना चेतई के करे गो अग्गै जाए। ज्ञानी होए सो चेतन होए अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथै कमावे सो मिले अग्गै पाए जाए। महला तीजा तुर खसमै का हुक्म पया विण सतगुर चेतिया ना जाए। सतगुर मिलया अंतर रव रहया सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा सुमालदा दम न बिरथा जाए। जन मरण का पहो गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै ग्याना। कौड़ा किसे न लगई सब नाही पहना उस्तत बरना सकी ससत कुरबाना। श्लोक महला पहला कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला हिंदू मूले पूले अखुटी जाही नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंधे अंधार पाथर ले पूजे मुद गवार ओहे जे आप डुबे तुम कहां तरन हार। पौड़ी सब केहो तेरे वस है तुम सच्चा साहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुग सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसै। पेखी जोग ना होए नानक ऐसा विरला को जोगी जिसकट प्रगट होए।

जिन जेवा हर रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजे पाए, सबना नजर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे पर जवे गोई, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर के शब्द मिलाए, मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिलै सच मिलै सच नाम समाया, आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए, वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए, सदा

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ा।

आए वसया जामतें फरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया, ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना, जो दे सहना मने कहना, आख या आख नाही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी नाम।

करहो दया तेरा नाम लखाना सब्यो पाई आप आपे सरबे समाणा सरबे समाणा आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाणा गावन सुर नर सुगण सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिनी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम नायक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सहे समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

गुर प्रसादी करो कृपा लेहो जम उबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हो आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार की सह चुकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझै गुर विचारा वड्डा साहिब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोयन दंतरी साला सोहने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेली हो

तरल जवानी, तरला जवानी आप पानी, इच मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग तरै, ठिम ठिम आप आप संदूरै। श्री रंग राती फिरै माती, उद गंगा वाणी, बिरवंत नानक दास हरका, तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वड़हंस महला तीजा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर कै रंग रती मुइये, सोभावंती नारे, सच्चा शब्द मिल रहिए मुइये। पिर रावे पाए प्यारे, सच्चा पाए प्यारी, कंत सवारी, हर हर स्यों ने हो रिचाया। आप गवाया ता पिर पाया, गुर कै शब्द समाया। सा तन शब्द सुहावी, प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी। नानक सा तन मिल लई, पिर आपे साचा साहे सवारी। निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम, गुरमुख जिनी रावया मुइये। पिर रव रया पर पूरे राम, पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे। जुजुए को जाता तन बाली भोली, पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता। जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया, हर सर रही परपूरे। नानक कामण सा पिर भावै, सबदे रह हदूरे। सुहागणी जाए

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला चौथा, कोड़िया एक ओंकार। सतगुर प्रसाद देह तेजन जी, राम उपाइया राम। तन मानस जन्म पुन पाइया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया। देह सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावै। हर हर हर नवरंगड़िया, एह देह सो बांकी जित हर जापी। हर हर नाम सुहाविया, वडभागी पाई नाम सिखाई। जन नानक राम उपाइया।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाण नाम जाण हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माण रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महला पंजवा शंत कर चौथा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवक सेव करे सब तेरी जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होवा जिन विचों आप गवाया आन दिन गुण गावे नित साचे गुर कै शब्द सुहाया मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी रहाओ जागत रहे इतनी प्रपाया शब्दे हों मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राख्या उर तारी एहो मनुआ दे जस्ताम दा दूजे पाए खुआया मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया सतगुर भेटे ता ना हो पाए हम मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावै गुर कै शब्द विचारी आपे मिल ले प्रब साचे साच रखिया उर धारी नानक नाम गत मत पाई एहा रास हमारी सोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया नाओ हर तन सच सोए अखुट नाम कदे निखुट नाही अखुट नाम तन कदे निखुट नाही किने ना कीमत होए नाम तन मुख उजले होए हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए बिन शब्द जग पुलदा फिरदा दरगह मिलै इस जाए रहाओ इस ते ही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लो मोह अहंकारा अमृत लूटा।

हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुक्त गुबारा आपे कर वेखे मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटे भाई करता करे सो होई नानक ना वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करे प्रभ पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करे आप राखे जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाने मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझे विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सको बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सह सुमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा क्रिभ कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हम मैं खोई। सोरठ महला।

बीच बिखाई, माधवे ऐसी देह बुझाई, सेवो साध गहो ओठ चरना, न बिसर मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चित, तुम ऐसी हृदय ना आई, प्राण पत त्याग अंतु रचिया, उर्ज्यों संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै, साध संगत बुध पाई, सागत का बकना इउ जानौ, जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो, कहना कछु ना जाई, जन नानक दीन सरण आयो प्रभ, सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता, माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी, सब मिथ्या असनेही, रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो, एक पाजो राम स्नेही रहाओ, तीन संगियां कर देही कीनी, जल कूकर पस में ही, होए आमरो ग्रे मैं बैठा, करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे, काचे ताग परोही, टूट जाए गो सूत पापरे, फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस ध्यावो दिन रह नेही, जन नानक प्रभु कृपा धारी, मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरा पेटियो वट भागी, मने भया परगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा, सोई खसम हमारा, निरपो पै गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त, प्रभ है पी हो बनहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचरज सोभा, कारज आया रासे, नानक कौ गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा, सुखिए कौ पेखे सब सुखिया, रोगी कै भाण सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, अपना हाथ संजोगी।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निकोठा कर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोहरा रहा हो कीते कहो मेरे सम्मान करन हार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पाने खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पाया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जे

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवां मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्द पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई।

मन बाँथ फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। इहां सुख आग्या मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने। निरभउ भय हृदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पाणे।

कुछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु ऐशानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, हमें बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़दे मैं, परदारा संग फाके। चित्र गुबत जब लेखा मांगे, तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओटना काई। काढ़ लिहो संसार सागर मैं, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म होवा सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी। जप अंत करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो पाई। साध संग सदा सुख पाई है, हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनों कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, गुर चरणी मन लागा। गुण गावते अच्युत अविनाशी, अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। आदि अंत मद नानक कहो, सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा। बिनसै मोह मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी। संतो यह बतावो कारी, जित हों मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी। पेख्यो प्रभ जी अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बेदारी। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया। ऊंच नीच मैं ज्योत समाणी, कट कट माधव जिया। संता कट कट रया समायो, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व मैं। जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निदान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। सर्व निवासी सदा अलेपा, समय रिया समायो। सोरठ महला पंजवा, जाकै सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निद पावै। बहुर ना तृष्णा भुखी, जाको नाम लै तू सुखी। सास सास त्यावो ठाकर कहो, मन तन जिया रे मुखी रहाओ। सांत पावै होवै मन शीतल, अग्न ना अंतर तुखी। गुर नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थाल तेरे पवन रुखी। सोरठ महला पंजवा।

आवो अपनी विद आप जनावो हरजन मंगल गावो रहाओ बिसर नाही कबहू ही ते ए बिद मन मैं पावो गुरपुरा भेट्यो वडभागी जन नानक कतै ना तावो सोरठ महला पंजवा जा कै सिमरण सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रब त्याग अवर कत राचो जो समय रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो पूर्ण हो वै काला रहाओ सार संभाल नित प्रतपाल प्रेम सहित गल लावे कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावे सोरठ महला पंजवा अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंछ जिन हर नाम हृदय परोई सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन साधारे दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम विचारे

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लए सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला।

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवां मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवां जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखे पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास कौ कंठ लाए राखे जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आगै चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवां हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना हो

जिन जिन साज संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपुर है राखी सरण सचे की ताकी परमेसर आप हो रखवाला सांत सहज सुखन मैं उपजे मन हो

मिल साधु दुर्मत होए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीव परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो भयो कृपाल सर्ब को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तौ दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्ब गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावै, हरे अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जल नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी शरणा। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कारज सब सवारिया मंदा को नाय लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण साह सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कारज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावतला भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवा,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, तां की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांझ फिर आए, नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखां का दाता सतगुरु, ताकी सरणी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आराधो, गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी, नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हरे अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही

दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा। मन रे कौन कुमत लीनी पर दारा निंदया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा। मन रे प्रभु की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रु जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरु कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सोनो निमख ना हिये बसावै। पर तन परदारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्य

लोभ मोह अवमाना हरख सोग तेरह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जा स्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को व्योहार बनयो है जा स्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला घर पहला अष्टपदियां चौतुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजाओ बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागी है पाई दर कर साचया पूल पाता लिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिर पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो।

आओ गुर की कारक मामनी पाई आप छोड़ चितलाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हरि आप वसै मन आए फिर का हुक्म न जानी पाई सा कुलखणी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना में कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग आंदन राते गुण रवे पाई निरपव गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुम

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिन तू विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वस न जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टै पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खटकर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मै हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै, सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाईयन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन न मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखां को ना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखां नो सुख अगला, जिनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना, जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए, जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सुवारथी कारज ना सके सुवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चे नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चख

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भज्यो ना रघुपत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार

सबै जग ऊपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन और ना देखा,

बाजी घर डंक बजाई सब खलक तमा से आई बाजी घर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पैली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजे।

भय हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत आन अचरियत आन काशो समझ ना परै अपरमाया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मानो काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट महा अष्ट दशा सिद्ध नवन करतलता के हर हर हर ना जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद बिद चौतीस अखर माही ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े पाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तारो जन्म मरण पै भागी जाओ तुम गिरवर तव हम मोरा जाओ तुम चंद तव हम भय है चकोरा माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यो तोर कमन स्यो जोरे रहाओ जाओ तुम दीवरा तव हम बाती जाओ तुम तीर्थ तव हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरे अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटै जम फासा भगत हेत गावै रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसै बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठावे पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लो गंठ गंठ खरा बिगुचा, हमर गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैना।

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेवया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नमा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविया, अंत छिडाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा, सद कुरबान जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है, दूजा नाही कोए, ताकि सेवा सो करे, जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई दे, जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए, रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोत ना जाना, नानक बिन मैं तिसै सरेवो, जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड़ै गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए, सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रया समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै,
ਜਿਸਕਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ

कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदा तार। तनासरी महला पहला, चोर सलाहे चीतना पीजे, जे बदी करे ता तसूना छीजे। चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़े आर, बिन बोले बुझिए सचियार। हाओ चोर सवाल्यो चोर से आना, खोटे का मुलेख दुगाना। जे साथ रखिए दीजर लाए, जा परखिए खोटा होए जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे। जे वड़ियाइयां आपे खाए, जेही सुरत ते है राहे जाए। जे सौ कूड़िया कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार। तुद पावे अद्धी परवान, नानक जाने जान सो जान। तनासरी महला पहला, काया कागद मन परवाना। सिर के लेखना पड़े आना, दरगे कड़िए तीने लेख। खोटा काम न आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए। खरा खरा आखे सब कोए रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया गाए। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरह सगले कुल तारे। दान सबंध सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान। तनासरी महला पहला, कर तीजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद काल नाही, जोग नाही, नाही सत का टब। था निष्ठ जग प्रष्ट होए, डूबता इव जग। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटै नाग पकड़े। ठगण को संसार रहाओ, आठ सेती नाक पकड़े। सूते तन लो, मगर पाछा कछ ना सूझे। एहो पद म्यालो, खत्रियां ता धर्म छोड़िया। मलेश पाखिया गही, सिहट सब एक वर्ण होई। धर्म की घत रही, अष्ट साज साज पुराण सोदे। करे वेद अभ्यास, बिना महर के मुक्त नाही। कह नानक दास, तनासरी महला पहला। आरती एको अंकार, सतगुर प्रसाद। गगन में थाल, रव चंद दीपक बने। तार का मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए। पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन, नन नैन है तोहे कहो। सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमल नानेक पद गंद बिन। सहस तव गंध विचलत मोही, समय जोत जोत है सोए। तिसके चानन समय चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मानो। अन दिन मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारिंग को। होए जाते तेरे नाम वासा, तनासरी महला तीजा। कर दूजा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। एहो तान्या खुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई। से तनवंत हर नाम लिव लाए, गुर पूरे हर तन परगासिया। हर कृपा ते वस

साहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट ब्राद मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उड़ छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की यो बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूझी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत भोजन।

कामवंत कामी बहु नारी परग्रह जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बनयावै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरा ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने उपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दे

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बिखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस जोग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, साध सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई। तुम

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिख मना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहो मनुआ, बहुण ना कतहुं कावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दय अल्ला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निध नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करे मान खुडह कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेख आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मन जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पाले से ही पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गाव।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना बेद पुकार कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे।

नाम गोबिंद का सदा लीजे, मिटे कमाणे पाप चराणे, साध संगत मिल मुआ जीजे। रहाओ राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लह। सरण समराथो अकाथ्या गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन राप सोग अगन तिस जन ना ब्याप सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहाई मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानाओ, तब हाँ पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहि समाए, सरवर मैं हंस हंस मैं सागर, अकत कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जोत रहे लिव लाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे, हमे मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मैं आए, जन्म पदार्थ

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ

आप दिखावे आपे देखे, हठ ना भतीजे ना बहु पेखे, घर पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पर पड़ भूले चोटा खाहे, बहुत सियाण पे आवे जाहे, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साच मिले पावे पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर, पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे। किस आगे प्रभ तुद सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, जो तुद पावे त्यों राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, कर शेवा अष्टपदी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जो जो जूनी आयो, तेह तेह उर जायो, मानस जन्म संजोग पाया, ताकि है उठ साध, राखो दे कर हाथ, कर कृपा।

अन क्यो भाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करत सद ही विहावै कोई ऐसो रे भेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खेना धीरै मेरे करके पंचा।

हमरा मन तनु राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन छत्र चल था देही गिरज न खाई सर्व सो इनकी लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी जादवे फल पाए कृपा करी जन अपने उपर नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो यह संसार ते तभी छूटो जो माया ने लिपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेहता दर्शन पावो इत कर भगत करे जो जानो तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो ए संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला ज्यो कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरा मन रामैया तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पावरला ज्यो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी कौ जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी कौ कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया बारक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले कहूं डिठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिए पुंडरक मना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

पिंदी उबकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, तू कुन रे मैंजी नामा हो जी, आला ते निवारणा जमकारणा, पतत पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वह मुन जनो, जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्पतारु शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाल आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुरमिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगमा पारा, जिस सिमर दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उरतारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुर नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर हर भगत दरड़ावो, हर हर नाम ओ महाराम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम। कर कीर्त जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वासे आवै, मन तन हरिओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगना जगलाहा। तन तन वड्डे ठाकर प्र मेरे, जप नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा। आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरतै। आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोप दीपाहा। आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथा तत कढ़ाए। जप नाम रतनो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावा। गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई। हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वड़साहा। गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभावै। गुण नानक नाम्यो महाराम। जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा। पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा धार मधुसूदन। मिल सत संग ओ महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा। कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावै गुण बोलै बाणी। हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा। हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत भारी। गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा। किल विख मैल पाप तोवाहा, दीन दयाल हो जन उपर। देहो नानक नाम्यो महाराम। जैत सरी महला।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतस बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसर ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा

नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा। राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हौ किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया। वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया। केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूली है। मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया धारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानक की बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइए। आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदिया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मन ता को त्याई है सब जाके हाथ। राम नाम तन संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए। थान अंतरे आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी। गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी। पाज सरन स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ, ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋਬਨ ਗਇਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ, ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋ

श्री राम रंगया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल शरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्भ संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਕੱਟੀ ਐ।

लोको गृह रचनाया पारं मन बिलास स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृम है मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत ने है सो साई जय विसरै नानक सो तन खे हे पौड़ी सुंदर से जा नेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र नाठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राजरस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसन अरे चंत मूड़ अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जिलते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की भुल तुम्मा जिसम सोहना आडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चल सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रपतावै ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजी है हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है सलोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कशुना ला गई भगतन कौ मीठा यान स्वास सब फीकिया कर निर्णव डीठा अज्ञान परम दुखटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंगम जीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसने चरण कमलर चंत संत नानक आना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़ियाना डे उचित जीवन संगम तिस्तनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन पा

नाद कुरंकै बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थीवै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना तूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक सेई तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीमना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी प्रवाण जित मिलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पातत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे आ भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल।

काल जाल जम जोहे ना साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोक सुबाया टोडी महला पंजवा किरपनो तन मन किलविख परे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन को एक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहितो तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरण परे दरबारे कोट प्राद खंडन के दाते तुझबन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध

कह हरी हरी आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवां कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु करना लेख लिखियो तुर माथै। एह बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यों रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै बिन लहना कैठे पायो रे। महराज रो गाथ बाहू स्यों लुबड़ियो नेह पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राहित मिट्यो रे। जा को लहनो महराज री गठड़ियो जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा हीरे दीन। रूप अनुरूप मेरो कशना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरै देखन कौ दर्शन प्रवनीत। बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी

खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतरजामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन कौ धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल बेद बखयान करत साधु जान पागहीन समझत नहीं खाल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोटफला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत्या चुत अविनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्थिर पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काड लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुना संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवे हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ
पुन दान पूजा परमेश्वरो हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यो रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैं निस्दन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अंत गत।